0: Aqua 99.9.
1: ऐसे गीत तुम्ही हो महबूब मेरे, तो सुन रहे अपना मन पंदा पंजाबी गीतों का प्रोग्राम मेला गीतों का स्वाद 99.9 FM तो शाम कुमार दे नाल। चलो अगे एक होर गाना, बेहतरीन बोल बेहतरीन आवाज़ वो सुन दिया।